0: फर्स्ट क्लास में एंड्स अ वेटिंग रूम, सेकंड क्लास में एंड्स अ वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास वी मेंड्स अ वेटिंग रूम, सेकंड क्लास वी मेंड्स अ वेटिंग रूम, वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट रूम, नॉन वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट रूम.
1: I make my way through one India to find another.
0: Veg or non-veg, sahib?
1: Travel is possible only because of the British.
2: Hey, Babu.
0: Class 4, workman's restroom. Class 4, workman's restroom.
1: I see India through the eyes of colonialists.
3: Gana na aya! Bajana na aya!